राजा मेहंदी अली खान ने लगभग 125 फिल्मों में 400 से ज्यादा गीत लिखे, रोमांटिक से लेकर देशभक्ति, दर्द से लेकर कॉमेडी और दर्शन तक हर तरह के गीत राजा मेहंदी अली खान की कलम से निकले। जैसे कि अगला गीत जिसे आप सुनेंगे आपकी परछाइयां फिल्म से, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की।

0: मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आशक संवाद 1945 आशर माह की चतुर्दशी तिथि तदनुसार सन 2026 जुलाई महीने की दिनांक 28 और दिन है मंगलवार। श्रोताओ, आपसे लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित की जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री हमसिंह, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री न्यूटन बोरा, श्री अशुद बोरा और श्री हेमंता स्वर्गरे, मोनपा में उद्घोषक श्री लोपसंग तोप्तन तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका कर्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होती है। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुनिए अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है, इससे पंजाब 27 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जुड़ सकेगा। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी की चेतावनी जारी। और छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और बी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरलेस संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उसे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली सरकार को दर्ज FIR की जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन कहा कि कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों पर जवाब भी मांगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह चर्चा का जवाब दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
1: And for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished.
0: राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही फिर शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में और संशोधन करना है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान ही विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरवंश ने सदन की कार्यवाही आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक बैठक संसद भवन में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेता बैठक में शामिल हुए। तृणमूल से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसद भी गठबंधन की बैठक में शामिल हुए। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी हितधारकों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि NDA संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
2: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी

0: कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास करें।
1: भाजपा राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब में बार बार हो रही कथित पेपर लीक की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
2: पंजाब में पिछले 5 सालों में 6 मेजर पेपर लीक्स हुए हैं और चीटिंग स्कैम्स हुए हैं। अभी भी 19 जुलाई को पंजाब के फार्मेसी एग्जाम में बहुत मेजर चीटिंग हुई। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी पूरे जेंजी को ये बोलते हैं कि भाई सड़क पे आइए, नेपाल बनाइए भारत को, और जब पीसफुल प्रोटेस्ट युवा पंजाब में करते हैं तो उनपे बर्बरता से अरविंद केजरीवाल लाठी चलाते हैं। पंजाब के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका हर हाल में रेजिग्नेशन होना चाहिए।
1: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
3: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
1: सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।
4: गृह राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साइबर अपराध के मामलों, खासकर साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में E0 FIR दर्ज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था के अंतर्गत नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन 1930 के जरिए मामले दर्ज किए जाते हैं। इससे अपने आप में E0 FIR दर्ज हो जाएगी। इसके बाद इसे तुरंत संबंधित इलाके के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दिया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता को E0 FIR को नियमित FIR में बदलने के लिए 3 दिनों के अंदर संबंधित पुलिस स्टेशन जाना होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारे वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब में अमृतसर के श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज एयर इंडिया के इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही पंजाब उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के 27 वैश्विक गंतव्यों से जुड़ गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापो राममोहन नायडू ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल लगभग 1.5 लाख यात्री अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए अमृतसर से दिल्ली की यात्रा करते हैं। इसी तरह लगभग 1.5 लाख यात्री विदेश से दिल्ली आते हैं और फिर अमृतसर की यात्रा करते हैं।
5: हब एंड स्पोक केवल एक एविएशन मॉडल नहीं है, यह एक अपॉर्चुनिटी मॉडल है। दिल्ली जैसे बनेगा हब और अमृतसर नॉर्थ इंडिया का इंटरनेशनल गेटवे बनेगा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इन जैसे बड़े कैचमेंट एरिया आपको यहां से जुड़ेंगे। विदेशों में रहने वाले लगभग 3 करोड़ भारतीयों में करीब 1 करोड़ पंजाबी हैं। एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसका सीधा लाभ अमृतसर की अर्थव्यवस्था को भी पहुंचेगी और हब एंड स्पोक के माध्यम से हमारी एयरलाइंस की रेवेन्यू पर फ्लाइट भी बढ़ेगी।
1: नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और एयर इंडिया एयरलाइन के अध्यक्ष विपिन कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि हब विमानन क्षेत्र के लिए सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक यात्रा करने में आसानी होगी। इस शुरुआत के साथ अमृतसर से प्रतिदिन 2 इजी कनेक्ट उड़ानें शुरू हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्र के विकास और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में बात की।
6: इन 4 वर्षों में समावेशी विकास की सोच के साथ साथ देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व और आत्मगौरव की भावना को नई ऊर्जा मिली है। एक खुशी की बात है कि पिछले वर्ष ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं जिनमें भारतीयता की भावना का विस्तार हुआ और हमने औपनिवेशिक मानसिकता के अफसोस को खत्म करने

0: की और ठोस कदम उठाए हैं। विकास और जनसेवा की ये यात्रा निरंतर आगे बढ़ेगी तथा हम सब नए संकल्प उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहें।
1: राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के बच्चों के लिए बचपन बाल परिसर का भी उद्घाटन किया। इस पहल में किलकारी क्षेत्र और समर्थ आंगनवाड़ी सहपालन शामिल हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाल परिसर में बच्चों से बातचीत भी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारतीय तटरक्षक बल ICG कर्मियों और उनके परिवारों के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों की जानकारी दी। इन नीतिगत सुधारों का उद्देश्य अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तों में स्त्री पुरुष समानता को बढ़ावा देना है। झारखंड सरकार की नई दिशा नई पहल नक्सल विरोधी अभियान के तहत आज बड़ी सफलता मिली। कोल्हान और लातेहार क्षेत्र में सक्रिय 16 माओवादियों ने रांची में झारखंड पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में एक रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 काडर सदस्य शामिल हैं। इनमें 15 लाख रूपये का इनामी रीजनल कमांडर संतोष उर्फ वासुदेव भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के सांसदों से मुलाकात की और राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की सहायता के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। ओडिशा में मूसलाधार बारिश जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बने हवा के गहरे दबाव के कारण राज्य में तेज वर्षा हो रही है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
2: मौसम विभाग ने अगले महीने की 2 तारीख तक पूरे राज्य में व्यापक बारिश और कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, केंदुझर और संबलपुर जिलों में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखे गए हैं। बालेश्वर शहर में पिछले 24 घंटे के दौरान लगातार बारिश के कारण सियासी इलाकों में पानी भर गया और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कांसाबांसा और गमई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से भद्रक जिले में बाढ़ की नई लहर आ गई है। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को 24 घंटा सतर्क रहने का निर्देश दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अरियाके सागर और यात्सुशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशू रेलवे कंपनी ने कहा कि भूकंप के बाद क्योशू शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। भारत के पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वर्ण पदक जीतने पर शर्मिला धनखड़ को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू। एयर इंडिया ने अमृतसर हवाई अड्डे पर इजी कनेक्ट हब एंड स्पोक मॉडल शुरू किया है। झारखंड में 6 शीर्ष कमांडर सहित 16 माओवादियों का आत्मसमर्पण। सरकार ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध के मामलों में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। निजी श्रोता अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए लामा

0: गुम्बु डगबा और साथियों से बोध भक्ति गीत। निजी श्रोताओं पेश है कार्यक्रम वंदना।
1: Sanjay Jana,

Sanya

Kajiri,

Dede

Tolia

Tudo

Sanjaya Namah Shivaya.

Sanjaya,

Thank you.

Allah'a emanet olun.

Sanjaya

Yabe de ye lo che che be de ye go de na cha de mi ye.

Yeah.

Yang

Amore mani che cae tu a denello togno per lui che c'è un dito.

Yeah, man.

श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे लम्मा गुम्बू डगपा और साथियों से बोध भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बज चुके हैं। डीजी श्रोतम अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए गायक पपून के स्वर में चंद असमिया गीत। डीजी श्रोतम पेश है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद असमिया गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए अगला गीत।

श्रोताओ, इसी असमिया गीत के साथ ही विभिन्न प्रांतों की गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगतिंग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस पेमल हमो से तवंग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में विषय पर चंद शब्द।

0: काशी दिले आकाशवाणी तवांग के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम पेमा लामू है। मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगटेंग में 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। आज मैं कार्यक्रम मेरी बात के तहत कुछ बात साझा करना चाहती हूँ और मेरा विषय है तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में। विद्यार्थी किसी भी देश और समाज का भविष्य होता है। आज हम जो सीखते हैं और जैसे व्यवहार करते हैं वही हमारे कल को बनाते हैं। इसीलिए यह कहना बिल्कुल सही है कि तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में है। तवांग अपनी सुंदर प्रकृति वादियों, समृद्ध संस्कृति और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसकी सुंदरता और पहचान को हमेशा बनाए रखें। एक सच्चा विद्यार्थी केवल पढ़ाई में ही अच्छा नहीं होता बल्कि वह अनुशासन का पालन करता है, अपने शिक्षकों और बड़ों का सम्मान करता है, अपने विद्यालय और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखता है और दूसरों की सहायता भी करता है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, पानी की बचत करनी चाहिए और प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े बदलाव लाते हैं। हमें अपनी मुनपा संस्कृति, भाषा और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। हमें अपने त्योहारों, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत को समझना और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी अपनी पहचान को बनाए रख सके। आज का विद्यार्थी ही कल का शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी, सैनिक, किसान या समाज सेवक बनेगा। यदि हम आज ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो तवांग का भविष्य भी उज्जवल होगा। चलिए हम सभी यह संकल्प ले कि हम अच्छे विद्यार्थी, अच्छे नागरिक और अपने तवांग के सच्चे जिम्मेदार बनेंगे। अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने अच्छे कार्यों से हम अपने तवांग को और भी सुंदर, स्वच्छ और प्रगतिशील बनाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कांगटेंग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस पेमा लामू से तवांग का भविष्य आज के विद्यार्थियों के हाथों में विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यहीं पर समाप्त होता है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा इस संदेश के बाद।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।
3: सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। समय दोपहर के 3:33 हो चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से, श्रिया घोषाल और सोनू निगम के युगल आवाजों में। शांतनु मोइत्रा द्वारा संगीत पद पर इस गीत को लिखा है स्वनन किरकिरे ने।

श्रोताओं, अगला पेशकश हमने लिया है पलोमी घोष के स्वर में फिल्म हेलीकॉप्टर इला से। गीत स्वनन किरकिरे के है व संगीत अमित त्रिवेदी का।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवंग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। फिल्म वेक अप सिद से कविता सिद के आवाज में इस गीत के गीतकार है जावेद अख्तर तथा संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म एक दीवाना था से लियोन डिसूजा और सुजानी डी मेलो के स्वरों में। जावेद अख्तर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी।

0: हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। समय दोपहर के 3:50 हो चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, हम आपकी खिदमत पर लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनते हैं फिल्म बार बार देखो से अमर अंसारी, बादशाह और नेहा कक्कर के स्वरों में। गीत कुमार के है व संगीत प्रेम हर्षदीप का।

बार-बार देखो से, अमर अंसारी, बादशाह और नेहा कक्कर के स्वरों में, गीत कुमार के है व संगीत प्रेम हर्षदीप का।

श्रोताओ, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए मोहित चौहान और अंतरा मित्रा के स्वरों में फिल्म राजनीति से। इस गीत के गीतकार है इर्शद कमिल तथा संगीतकार प्रीतम।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, संदीप सिंह द्वारा शब्द रचना पर फिल्म मैरी कॉम से गायक अरिजीत सिंह के स्वर में, और इस गीत को संगीत से सजाया है शिवम ने।

श्रोताओं, गीत मंजरी कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म सत्यमेव जयते तू से। जरा एस खान और जैस मनक के स्वरों में, जैस मनक के रचित गीत को संगीत से संवारा है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोल पर इसे संगीत से सवारा है विशाल और शेखर ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म शिवाई से यह गीत अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान के आवाजों में। शहीद कौधरी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था मिथुन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए अगला गीत। पेश है फिल्म बॉडीगार्ड से ऐश किंग और क्लिंटन श्रीजो के स्वरों में। नीलेश मिश्रा द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है प्रीतम ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है मोहन कनन और शिल्पा राव की आवाजों में फिल्म कॉकटेल से। जावेद अली द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

श्रोता, फिल्म कॉकटेल के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो चुके हैं। लीजिए पेश है शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए उस्ताद बले गुलाम अली खान से ख्याल। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बरी गुलाम अली खान से ख्याल। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यही पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

कहानी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 वर्ष से कम उम्र और बिना किसी आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डिवांगसू ने मैचुका से आलो, पासीघाट और ईटानगर के लिए 3 क्विंटल ताजी रेनबो ट्राउट मछली की रेफ्रिजरेटेड खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिन्मय अमृत यात्रा का नेतृत्व कर रहे स्वामी मित्रानंद ने ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय की हिंदी अधिकारी गुमपिंग मुसोलोम्ब पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला नॉन टीचिंग कर्मचारी बनी। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा क्षेत्रीय मीडिया के साथ संवाद को सशक्त बनाने और प्रत्यक्ष सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वार्तालाप 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क तथा दिवांग वैली जिला प्रशासन के सहयोग से आरएनई में तेजस पहल के अंतर्गत एक कार्यशाला का आयोजन किया। और अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले के मैचुका में आयोजित ट्राउट क्वेस्ट 2.0 का दूसरा संस्करण सम्पन्न। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के छात्र प्रदर्शनकारियों को रिहा करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों से नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च

0: न्यायालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कई अंतरिम निर्देश भी जारी किए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने प्रदर्शन वाले सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन रिकॉर्डिंग, कैमरा फुटेज, वायरल संचार रिकॉर्ड, पीसीआर लॉग और प्रदर्शनों से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखें। न्यायालय ने आदेश दिया है कि प्रदर्शनकारियों से एकत्र किए गए डिजिटल डेटा के सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उससे सार्वजनिक न किया जाए। पीठ ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को जवाब मांगा है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श विधेयक पर चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को भारत के विभिन्न देशों के साथ व्यापार और मुक्त व्यापार समझौतों से संबंधित घटनाक्रमों की जानकारी दी गई।
1: जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं दुनिया से, वो 2013-14 तक भारी हेवी ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज ये जान करके खुशी होगी कि लगभग दुनिया के वो सभी विकसित देश भारत के साथ अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में है। आज जो बिल आ रहा है उस पर सभी लोग सकारात्मक रूप से भाग लें, विपक्ष से भी हम लोग अपेक्षा करते हैं डिस्कशन में भाग लें, उसको पास।
0: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि विपक्ष लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा में होने वाली चर्चा का इंतजार कर रहा है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने पूरी व्यवस्था की समीक्षा और उनमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।
2: ये बिल काफी है जो सरकार ने लेके आए हैं। सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट करने से या एक दो चीजें बदलने में क्या हमारे बच्चों के भविष्य बेहतर होने वाला है? बहुत सारे प्रश्न हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे सिस्टम को आप देखना चाहिए और बदलना चाहिए।
0: अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री गैब्रियल डिवांगसो ने आज शिक्षा मंत्री पीडी सोना की उपस्थिति में शियोमी जिले के मैचुका से आलो, पासीघाट और ईटानगर के लिए 3 क्विंटल ताजी रेनबो ट्राउट मछली के रेफ्रिजरेटेड खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल राज्य सरकार द्वारा कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालकों को बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच और बेहतर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चिन्मय मिशन की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में आयोजित समारोहों के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र में चिन्मय अमृत यात्रा का नेतृत्व कर रहे स्वामी मित्रानंद ने ईटानगर स्थित लोकभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। इस पहल का स्वागत करते हुए राज्यपाल ने चिन्मय मिशन द्वारा आध्यात्मिक जागरण, चरित्र निर्माण तथा भारत की सभ्यतागत विरासत के संरक्षण में दिए गए दीर्घकालिक योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि तीव्र तकनीकी और सामाजिक परिवर्तन के इस दौर में चिन्मय मिशन जैसे संस्थाएं नैतिक मूल्यों के संवर्धन, आंतरिक शक्ति के विकास तथा समाज के सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। चिन्मय अमृत यात्रा समाज की सेवा के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चिन्मय मिशन द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहल है। अरुणाचल प्रदेश के राजीव गांधी विश्वविद्यालय के हिंदी अधिकारी गुमपिंग उसोलोम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1994 के बाद पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला गैर शैक्षणिक यानी नॉन टीचिंग कर्मचारी बन गई है। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध असमिया साहित्यकार इंदिरा गोस्वामी तथा पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात अरुणाचली साहित्यकार यशोदोर्जी थोंगची के साहित्यिक कार्यों पर हिंदी भाषा में अपना शोध कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये शोध कार्य उन्होंने प्रोफेसर एसएस सिंह के मार्गदर्शन में पर्यवेक्षण में संपन्न किया है। इस उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धि के साथ गुमपिंग उसोलोम्बे ने राजीव गांधी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक इतिहास के एक नए और ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी ने क्षेत्रीय मीडिया के साथ संवाद

को सशक्त बनाने और प्रत्यक्ष सहभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में वार्तालाप 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया। ये विशेष मीडिया आउटरीच कार्यक्रम केंद्र सरकार के 12 वर्ष सशक्तिकरण से समृद्धि तक विषय की ओर एक और कदम विषय पर आधारित रहा। कार्यक्रम का उद्देश्य पिछले एक दशक में देश में हासिल की गई प्रमुख विकासात्मक उपलब्धियों को रेखांकित करना है, करते हुए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ये एक संरचित राष्ट्रीय पहल है जिससे देश के प्रत्येक कोने से जमीन स्तर तक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की पहचान करने, उन्हें प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। कार्यक्रम में पीआईबी ईटानगर के संयुक्त निदेशक उत्सव परमार तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग निदेशक गजुम ताली सहित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र के अनेक प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क तथा दुवांग वैली जिला प्रशासन के सहयोग से अनिनी में ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अक्रॉस स्टेट एंड

0: गजुमताली सहित प्रशासनिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र के अनेक प्रमुख हस्तियों ने भाग लिया। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क तथा दबांग वैली जिला प्रशासन के सहयोग से अनिनी में ट्रांसफॉर्मिंग एंटरप्रेन्योरियल जर्नी अक्रॉस स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट तेजस पहल के अंतर्गत एक कार्यशाला का सफल आयोजन किया। तेजस पहल देशव्यापी प्रयास की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य गैर महानगरीय क्षेत्रों में उद्यमियों, स्टार्टअप्स और विद्यार्थियों की पहचान करना, उनका मार्गदर्शन करना तथा उन्हें आवश्यक संसाधन, मेंटरशिप और संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराकर उन्हें सफल एवं विस्तार योग्य उद्यम स्थापित करने के लिए सक्षम बनाना है। दक्षिणी जापान में आज एक शक्तिशाली भूकंप आया है। जापान की मौसम एजेंसी ने बताया है कि आज दोपहर कुमामोटो प्रांत में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। एजेंसी ने अयाकी सागर और सोशियोशिरो सागर के तटों के लिए सुनामी की चेतावनी भी जारी की है। क्योशु रेलवे कंपनी में कहा है कि भूकंप के बाद क्योशु शिंकानसेन सहित सभी रेल सेवाएं निलंबित कर दी गई है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पैरा शॉट पुट शर्मिला धनकर ने महिलाओं के शॉटपुट 5-7F में इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। शर्मिला कॉमनवेल्थ गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहला महिला बन गई है। इसके साथ ही ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल मेडल्स की संख्या 10 हो गई है, जिसमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। सरकार ने 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराधों के मामले में E0 FIR दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि E0 FIR के तहत 12,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani, the news read by Shubhashachi Vattacharji. The Supreme Court today directed the release of student protesters who were under 18 and had no criminal records. The court asked authorities to preserve electronic and digital evidence relating to the recent nationwide protests over the NEET paper leak. The apex court also observed that there was a need for a fair and independent investigation into the allegations of injuries to the students and police officials during the student protests last week. Hearing a batch of petitions alleging excessive use of police force during the demonstrations, the apex court issued a slew of interim directions. The 3-judge bench headed by Chief Justice Suryakant directed all states where protests were held to preserve CCTV footage, drone recordings, body camera footage, wireless communication records, PCR logs and other digital evidence pertaining to the protests. BJP MP Manoj Tiwari today said that during the NDA parliamentary meeting, MPs had been briefed on developments relating to India's trade and free trade agreements with various countries. Talking to reporters on the parliament premises, the BJP MP expressed hope that all political parties would participate constructively in the discussion to be held in the Lok Sabha on the bill to be amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Congress leader Shashi Tharoor today said the opposition is looking forward to the discussion to be held in the Lok Sabha on the anti-paper leak bill. The National Democratic Alliance NDA parliamentary party's weekly strategy meeting known as Mangal Milan was held today at the Parliament House. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and other leaders were present at the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during the parliament sessions with an aim to demonstrate complete alliance unity. MPs from Trinamool's breakaway faction, the newly formed Nationalist Citizens Party of India, NCPI, also attended the meeting. Punjab has been connected with 27 global destinations across North America, UK, Europe and Australia with the launch of Air India's Easy Connect hub and spoke model at Sri Guru Ram Das Ji International Airport, Amritsar today. With the launch, two daily Easy Connect

मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 6:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए पहले हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम जैदुन लेरिम के अंतर्गत जिमिथंग और दुदुंगर एजुकेशन ब्लॉक के श्री तेंजिन फुनसो और लुंगला के 6 बोटी शिक्षकों से ग्युनझक सुम्पा, ग्यप्ट्रो सिमकी, गंगलोमा, तुंगशा, चीशा, ग्यवे शब्दन, ड्रोलमा कोर्चे, मर्मे मोनलम, डिमन द्वीपा, देंसिक मोनलम, ग्यवे छेंगा और गोवा मोनलम। 7 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार शाम के 7:05 पर। शाम के 7:10 पर सुनिएगा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमेटेंग के 4 कक्षा की छात्र मिस चेजन लामू से हिंदी में एक कविता। कविता का शीर्षक रहेगा चिड़िया का गीत। आज शाम के 7:11 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इसके अंतर्गत आज आप सुनिए फिल्म आशिकी से कुमार सानू और अनुराधा पोटवाल के स्वरों में चंद गीत। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा रीजनल न्यूज शाम के 7:50 पर। शाम के 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत। आज रात 8 का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:30 पर। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 सुनिएगा न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से कल यानी 29 जुलाई 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। रोजाना की तरह कल हमारे सभा आरंभ होंगे दोपहर के 2 मिड डे न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। दोपहर के 2:30

मिनट पर भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसके अंतर्गत आप सुन सकेंगे गायक नरेंद्र चंचल से चंद हिंदी भक्ति गीत। 3 बजे विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे गायक भूपेन हजारिका से असमिया फिल्मी गीत। दोपहर के 3:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कल आप सुनिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कंगटिंग के 11वीं कक्षा की छात्र मिस सिरिंग छोटन से एकल उपयोग प्लास्टिक एक गंभीर समस्या विषय पर चंद शब्द। कल दोपहर के 3:33 का वक्त रहेगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नारी संगीत। इसमें कल आप सुन पाएंगे फिल्म डियर जिंदगी से जेसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी, फिल्म सिमरन से गुरु रंधवा और जोनिता गांधी, फिल्म महाराष्ट्र से मोनाली ठाकुर, फिल्म नीरजा से कविता सेठ, फिल्म केदारनाथ से देव नेगी और फिल्म वेकअप सिद्ध से कविता सिद्ध के स्वरों में चंद गीत। कल दोपहर के 3:50 पर आप सुन सकेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक गीत मंजरी। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे फिल्म जब तक है जान से नीति मोहन, फिल्म तुम मिले से नीरज श्रीधर, फिल्म क्रूक से निखिल डिसूजा, फिल्म थैंक गॉड से जुबिन नौटियाल, फिल्म जब वी मेट से मोहित चौहान, फिल्म शिवाय से अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान, फिल्म जब वी मेट से श्रिया घोषाल, फिल्म एक पहली लीला से उजैर जसवाल, फिल्म वीर से राहत फतेह अली खान और सुजानी डी मिल्लो, फिल्म वांटेड से शान और श्रिया घोषाल और फिल्म दिल्ली सिख से मोहित चौहान के आवाजों में चंद गीत। कल शाम के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात 4:55 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 5 बजे नामधर लेरिम। शाम के 5:30 पर आप सुनिएगा दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। शाम के 5:35 पर सुनिएगा नंगछोई कलोप। कल शाम के 6 बजे लेरिम सेरा। 6:10 पर कार्यक्रम चरोखा। कल शाम के 6:20 का वक्त रहेगा तवंग मठ के गेलोंग जम्बा जिम्पा और साथियों से नेतन छगजी। कल शाम के 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात शाम के 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। शाम के 7:10 पर फोन पर लिए गए फरमाशी गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित प्रादेशिक समाचार 7:45 पर तथा शाम के 7:50 पर रीजनल न्यूज। कल शाम के 7:55 पर आने लीजिएगा एक देशभक्ति गीत। कल रात के ठीक 8 बजे सुनिएगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन 8:30 पर, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुन सकेंगे न्यूज एट 9। 9:16 पर कल के सभी प्रसारण समाप्त होंगे। तो श्रोताओं ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम

अनोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनिएगा अब से ही कुछ ही पल बाद, यानी शाम के 6:20 पर मोनपा में कार्यक्रम। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: lainnya nasta da lunting tawang namnyeng adun sendun lerima jimetang dudungkar lobdu kak lobdu gegen tenzin punzo si uichungu gegen lhenye grosi donu gyunjak sumba kyabdu simgi kangloma tungsha jisha kiwishabden dolmukhorje marme monlam demon duba tenzik monlam kiwi tsinga ningwa monlam donosa nombor Hanging out the Gualunting and Tawang Tish of the Mun Baglerim Bana Chazan Duder, Hanging it some one of the Susan Sonder, Hanging out our Shuji, Na Hindiga, Sigin, the Shuji, Injiga Segur, Lunting and the Legal Susan Nansa.
1: Car Akashwani Samachar Kesat, my Munish Sharma. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त किए जाने चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता न होने देने के संकल्प की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले 18 वर्ष से कम आयु के प्रदर्शनकारी छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुनिश्चित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सरकार ने इस साल 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी को रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर हर सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
2: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपा पोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन को छिपाने का प्रयास है।
1: भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इस रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों वाली इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि स्कूल के शिक्षकों को सौंपे गए चुनाव संबंधी कार्य को असहनीय बोझ न डालें। न्यायालय ने कहा कि आयोग की संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग कक्षा शिक्षण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना किया जाना चाहिए। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना

0: fears that the death toll may rise. President Draupadi Murmu today presided over a special book release ceremony at Rashtrapati Bhavan, marking the completion of 4 years of her presidency. Vice President C.P. Radhakrishnan released 5 commemorative books on the occasion. In her address, President Murmu described the high constitutional post as a profound responsibility rather than merely an honour. At the ongoing Commonwealth Games, India's Sri Hari Nataraj qualified for the 100-meter backstroke swimming competition in Glasgow, Scotland today. Nataraj finished 5th in his heat and 13th overall. India's para swimmers also enjoyed a successful outing, with RVV BK Bodigina and Ali Imam qualifying for the men's 50-meter freestyle S13 final. In the men's 400-meter, Indian sprinter Vishal TK progressed to the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है कार्यक्रम आज की कविता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग के 4th कक्षा की छात्र मिस चेजन हमू से हिंदी में एक कविता। कविता का शीर्षक होगा चिड़िया का घर।
2: नमस्कार, मेरा नाम छेजन लामो है। मैं 4th कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम राजकीय माध्यमिक विद्यालय खेमेथांग है। मेरा कविता का पाठ है चिड़िया का गीत और इसके कवि है निरंकर देव सेवक। चिड़िया का गीत। सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला, सूखे तिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। फिर मैं निकल गई शाखों पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा ही है संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरी आया बहुत बड़ा है यह संसार। धन्यवाद।
1: श्रोतम, अभी आप सुन रहे थे गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल क्रिमितेंग के 4th कक्षा की छात्र मिस चेजन हमू से हिंदी में एक कविता। कविता का शीर्षक था चिड़िया का घर। इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:12 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए फिल्म आशिकी से चंद गीत। आइए श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला गीत पेश है फिल्म आशिकी से, गायक कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल के स्वरों में। गीत रानी मलिक के है व संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए अगला गीत। पेश है गायक कुमार सानू के स्वर में।

0: श्रुतव इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यही पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:25 हुए हैं। लीजिए श्रुतव, अब पेश है कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए मिस पेमा यूटर्न और मिस नोरबो लहमो गैलरी गाइड से मेजर रेलिनो पोप खातिंग वीरता संग्रहालय के विशेषताओं के बारे में, और उनसे वार्तालाप कर रही है मिस मुडुप ड्रेमा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी तवंग का कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। आज हम आए हैं तवंग के ऐतिहासिक पोप खातिंग संग्रहालय में। यह संग्रहालय मेजर रेलिनो पोप खातिंग को समर्पित है, जिन्होंने 1951 में तवंग में भारत का तिरंगा फहराया और इस क्षेत्र को भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया। आज हमारे साथ है अतिथि मिस पेमा यूटर्न और नोरबो लहमो, जो मेजर पोप खातिंग संग्रहालय की गाइड है, जो हमें इस संग्रहालय की विशेषताओं और इतिहास से परिचित करवाएंगे। तो आइए इस विरासत की कहानियों में डूबते हैं। तो आइए आज हम मिस पेमा यूटर्न और नोरबो लहमो जी से जानते हैं कि मेजर बोप खातिंग जी कौन थे और इस संग्रहालय के पीछे का इतिहास एवं इस संग्रहालय के अंदर मौजूद वस्तुओं के बारे में हम इनसे जानेंगे। तो चलिए,
2: ये गैलरी को हम लोग सॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितना भी सॉइल है, यहाँ 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटोरी से लेके आया गया है, और जहाँ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है वहाँ से लेके आया है। और ये कलेक्ट करने में 25 डेज में 21 स्टेट कवर किया था ये लोग ने। ये सॉल ऑफ इंडिया गैलरी के बाद मेजर बोप खातिंग का गैलरी है। ये म्यूजियम ही मेजर बोप खातिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि मेजर बोप खातिंग ही वो पर्सन था कि तवंग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेके आया था। इससे पहले तवंग जो तिब्बत रूल करता था, और 1951 को मेजर बोप खातिंग तवंग आया और तवंग को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेके आया। अभी यहाँ पे उनका लाइफ फेसेस देखने मिलेगा मेजर बोप खातिंग का। वो मणिपुर का है, वो तंगकुल नागा ट्राइब से है। उसने अपना ज्यादातर स्कूलिंग भी उसने मणिपुर में ही किया और शिलोंग में भी किया, और उसने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया कॉटन कॉलेज गुवाहाटी से, और अपना फर्स्ट कैरियर इसने स्टार्ट किया स्टूडेंट लीडर। फिर इसने टीचर, सोल्जर, डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, बहुत सारा पोजीशन इसने अपने लाइफ टाइम में हायर किया है। और ये पिक्चर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का साथ, जब उनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1957 को, और ये पहला मणिपुर ट्राइब था जो पद्मश्री अवार्ड मिला था। और ये एम्बेसडर टू बर्मा, जो उनका लाइफ टाइम का लास्ट पोजीशन जो उसने अचीव किया था।
3: नेक्स्ट जो अभी ये जो लेफ्ट साइड में है, ये एक तंगकुल शॉल है। यूजुअली जो लड़का जवान हो जाता है और एडल्टहुड में एंट्री करता है, तभी ये उनका कम्युनिटी

0: में दिया जाता है। तंखुल एंथम है जो मेजर बहुब खातिंग ने कंपोज किया था। मेजर बहुब खातिंग को पोइम का भी बहुत शौक था, तो वो उनका डायरी में बहुत सारा पोइम लिखते थे, तो एक पोइम से एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने एंथम बनाया है। तो आपको पीछे में इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी मिलेगा। खातिंग के चार बच्चे थे, दो बेटा दो बेटी। एक बेटा ये वाइस चांसलर है, रिटायर्ड वाइस चांसलर, अभी वो मेघालय में अपना बीवी का साथ है। ये एक उनका फेवरेट स्वेटर है, उनका वाइफ ने उन्हें गिफ्ट किया था हाथ से बुना हुआ। तो ये उनका आउटफिट्स है, वो जहाँ भी कुछ भी फंक्शन होता था वो ये पहन के जाते थे। ये तभी का पिक्चर है जब उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था 1957 को, तभी का पिक्चर है ये। और ये उनका आर्मी यूनिफॉर्म है। यहाँ पे भी एक शॉल है, ये भी एक तंखुल शॉल है। यूजली जब ये भी बुजुर्ग को दिया जाता है और ये हेड ऑफ द फैमिली को दिया जाता है।
1: जी जी जी।
0: तो यहाँ पे उनका तंखुल एंथम जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है आप देख सकते हैं।
1: जी जी।
0: तो जैसे हम ट्राइबल्स लोग फिशिंग और हंटिंग का बहुत शौक होता है, तो यहाँ पे मेजर बहुब खातिन को भी फिशिंग और हंटिंग का बहुत शौक था। जब भी फ्री टाइम मिलता था फिशिंग और हंटिंग के लिए जाता था मेजर बहुब खातिन। ये उनका असम राइफल्स का बैग है
1: जी।
0: और ये उनका असम राइफल्स का बिलोंगिंग बेल्ट बैज ये सब
1: जी।
0: और ये लोकल हैट, ट्रेडिशनल हैट, जब मेजर बहुब खातिन यहाँ आए थे तब यहाँ का लोकल लोग ने उन्हें गिफ्ट किया था।
2: नेक्स्ट ये पिक्चर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेजर बहुब खातिन के साथ मीटिंग हुआ था टिबेटन ऑफिसर और लोकल लीडर्स के साथ। पहले क्या होता था, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके ले जाता था, ल्हासा ले जाता था टिबेट जब रूल करता था। तो मेजर बहुब खातिन ने यहाँ 1951 को यहाँ आके ये टैक्सेशन बंद कर दिया और यहाँ से बोला कि यहाँ से अभी टैक्स ले नहीं सकते, ये ऑफिशियली अभी तवांग जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर आते।
0: और नेक्स्ट जो है मेजर बहुब खातिन का तवांग का जर्नी का बारे में है। तो वो 17 जनवरी 1951 से वो बाई फुट आए थे अपना आर्मी का साथ, और 1 फरवरी 1951 को वो यहाँ पहुंचे, और 14 फरवरी 1951 को उन्होंने परमानेंट फ्लैग होस्ट किया था। तो आज हम तवांग इंडिपेंडेंट डे 14 फरवरी को मनाते हैं। और यहाँ पे हियर वी हैव टू पीपल, जयराम दास दौलतराम एंड सरदार वल्लभभाई पटेल। आज इन तीनों का वजह से ही तवांग जो इंडिया का अंदर है, इंडिया का पार्ट है। तो सरदार वल्लभभाई पटेल ने ही लेटर भेजा था जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम वाज द गवर्नर ऑफ असम एट दैट टाइम। तो उन्होंने ही, जयराम दास दौलतराम ने ही चूज किया था मेजर बहुब खातिन को। ये ग्रीन लाइन जो है ये सभी एरिया तिब्बतन लोग रूल करते थे। तो दिरंग जोन, ये जोन मतलब हेडक्वार्टर, जोन मतलब हेडक्वार्टर। यहाँ पे दो जोन हेडक्वार्टर थे, तवांग जोन और दिरंग जोन। यहाँ से ये दोनों जगह से टैक्स कलेक्ट करके ल्हासा जाते थे। ठीक है, ये मेजर बहुब खातिन का डायरी पेजेस है, उनका अपना राइटिंग है। ये तवांग का जर्नी के बारे में लिखा है, कैसे इंटीग्रेशन किया था उन्होंने तवांग को। और ये जब मेजर बहुब खातिन यहाँ आए थे, यहाँ का जो मोनेस्ट्री का हेड ऑफ द मोंक जो रिम्बोचे है, उन्होंने गिफ्ट किया था उन्हें ये खंजर है। तो ये सॉइल जो उनका बर्थ प्लेस का सॉइल है, और ये सॉइल जो उनका रेस्टिंग प्लेस का सॉइल है। और ये गैलरी जो मेजर बहुब खातिन का मेडल गैलरी है, जितने भी उन्हें अपना लाइफ में मेडल मिला है वो सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। जैसे कि मिलिट्री क्रॉस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो उन्होंने पार्टिसिपेट लिया था उनका अरुणाचल रत्न, और ये पद्मश्री अवार्ड का भी है, सभी का है यहाँ पे। और वो कम भारतीय में से थे जो ब्रिटिश और इंडियन गवर्नमेंट के दोनों तरफ से मिला था। मेडल गैलरी का बाद अभी हम 1962 वॉर का गैलरी में आते हैं। तवांग को इंटीग्रेट करने का बाद, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में लाने का बाद 11 ईयर बाद 1962 वार हुआ था। और यहाँ पे अरुणाचल का मैप है, और ये हमारा तवांग जो हाईलाइट करके रखा है, और ये मैकमोहन लाइन रेड लाइन जो द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ 1962 वार है, तो जो कि बॉर्डर डिस्प्यूट का वजह से भी हुआ है, जो 1959 में असाइलम लिया था दलाई लामा जी ने, उसका वजह से भी चाइनीज लोग ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। जो अभी अक्साई चिन है लद्दाख में है, उनको भी कैप्चर कर लिया मोर देन 2045 स्क्वायर किलोमीटर चाइनीज लोग ने, तो इसका वजह से भी 1962 वार हुआ था। ये प्रेस कवरेज है, तो 1962 वार का प्रेस कवरेज है। पहले पेपर से ही कम्युनिकेट कर पाते थे, क्योंकि इंटरनेट वगैरह तो नहीं होता था, तो इसीलिए 20 अक्टूबर

0: से स्टार्ट हुआ था वार जो, लेकिन पेपर जो एक दिन का बाद छापते तो इसीलिए 21 अक्टूबर में यहाँ पे लिखा है और 22 नवंबर में खत्म हो गया था, सीज फायर हो गया था। तीनों जगह जो मैप है, जिमीदंग सेक्टर, बोमला सेक्टर, साउथ ऑफ तवांग सेक्टर, ये तीनों जगह में वार हुआ था 1962 वार में। जब चाइनीज लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ से जिमीदंग से एंटर होके आया था, क्योंकि उन्हें लगा कि जब 1959 को दलाई लामा जी भी यहाँ से भाग के आया था तो उन्हें लगा, चाइनीज को लगा कि यहाँ से जिमीदंग से आने से ज्यादा आसानी होगा कैप्चर करने में। ये हमारा जो 1962 इंडियन वेपन से जो 1962 वार में यूज हुआ था, और ये सभी जो 1962 वार में कैप्चर किया था चाइनीज गन है, ये चाइनीज वेपन से ये सभी।
1: जब 1962 वार हुआ था बहुत सोल्जर्स था बाहर से था, बट अरुणाचल का एक ही पर्सन था, ये नीलम तेबी, ये निशी ट्राइब का है। ये सब चाइनीज गन से, ये जो है कारगिल वार का है, और यहाँ पे है यहाँ का लोकल आदमी। जब 1962 वार हुआ था तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, किसी हम लोग का लोकल आदमी को इन लोगों ने भी मदद किया, जैसे कि सामान वगैरह दिया, यहाँ पे बहुत ठंडा है तो ब्लैंकेट वगैरह दिया। सामान जो है उनका सप्लायर्स बहुत कम था इंडिया के पास, तो इन लोगों ने सामान को इधर से उधर पहुँचाने के लिए मदद किया। और ये सब जो है 1962 वार में जो सोल्जर्स लोग ने यूज किया लाए, जैसे कि वाटर बोतल, कैप वगैरह। ये जो है गैलेंट्री अवार्ड जिसको मिला है 1962 वार में जो वार किया था तब, और ये सब जो पार्टिसिपेट जो 1962 वार में जो पार्टिसिपेट किया है वो सब जो शहीद हो चुका है ये पूरा।
0: ये बुक्स है, ये बुक्स और ये जो मूवीज का पोस्टर है, और ये सभी मतलब 1962 वार से रिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पे है। और ये सभी रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट लिया था, इसमें टोटल 46 रेजिमेंट है, तो 46 रेजिमेंट ने 1962 वार में पार्टिसिपेट लिया था। ये गैलरी जो मोन्यूल गैलरी है, मोन्यूल मीन्स हमारा द लैंड ऑफ मोनपा, मोनपा मीन्स जो ट्राइब यहाँ पे पाए जाते हैं वो मोनपा है। तो यहाँ का ट्रेडिशनल, यहाँ का कल्चर, यहाँ का यूटेंसिल्स, यहाँ का ड्रेसेस, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। ये यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, तो इसे हम खंजर कहते हैं। ये यहाँ का वूल से बनाया है, और ये कॉइन जो सिल्वर और कॉपर मिक्स करके बनाया है, तो पहले ये यूज होता था कॉइन। और ये गन बैग है, लेदर का है, और ये पहले का तलवार, पहले ऐसे यूज होते थे। ये एक हल है, पहले समय में यही यूज होता था, आजकल तो बहुत रेयर यूज करते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग मशीन का प्रयोग करते हैं। और ये हमारा छोशम है, पुराना छोशम, नया छोशम आपको यहाँ आगे देखने मिलेगा। यहाँ पे लोकल हैंडमेड पेपर है यहाँ का, जो हम अपना भाषा में मनशू कहते हैं। और ये पहले का वेइंग मशीन है, वेट नापने वाला। और ये जो बेल गाय का गला में बांधते हैं, और ये जो बैग पहले यही मतलब एनिमल के स्किन से बनते हैं, और पहले यही यूज होता था जो हम आटा चावल रखते थे। और ये सभी किचन यूटेंसिल्स है, आजकल भी यूज होते हैं, लेकिन गांव एरिया में होते, टाउन में इतना यूज नहीं होता ये। और यहाँ पे एक कंटेनर है, तो ये बियर का स्किन से बना है, वहाँ पे भी एक कंटेनर है, और वो जो है डियर का स्किन से बना है, और पहले यही यूज होता था। इसमें हम प्रीशियस सामान रखते थे, जैसे हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस हो गया, और ये ज्वेलरी, ये सब रखते थे यहाँ पे। और ये हम अपना यहाँ पे लोकल नूडल्स है वो बनाते हैं इसमें, और ये तो कढ़ाई, ये सब आप जानते होंगे। और यहाँ पे हम अपना लोकल चीज और लोकल घी बनाते हैं, और यहाँ पे हम अपना लोकल बटर ट्री बनाते हैं, और यहाँ पे जो मिल्क और वाटर स्टॉक करके रखते हैं, और ये जो लोकल वाइन बनाते हैं इसमें हम, और ये तो जो मिलेट वेजिटेबल्स ये सब डाल के लेके जाने वाला।
1: और दीवार पे जो चित्र बना है इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
0: ये एक लोकल हट है, तो पहले ऐसे ही घर हुआ करते थे, अभी तो आपको बहुत रेयर देखने मिलेगा, ज्यादातर गांव एरिया में होते हैं। ये पत्थर और क्ले से बनता है, और इसका बाद जो है ये जो है बेम्बू, जो अम्ब्रेला टाइप का होता है, हम इसे लेम्बू कहते हैं अपना भाषा में, ये रेनकोट टाइप का है। ये एक लोकल कारपेट है, तो ये हाथ से बनाया वाला है, ये हाथ से बनाते हैं ज्यादातर, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है।

0: जी। नेक्स्ट शो है हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस जिसे हम छुबा कहते हैं, जो शिव का उल से बनाता है और इसे हम आपा बा कहते हैं, द फर्स्ट मैन ऑफ तवांग। जब भी कुछ भी फंक्शन होता है, डांस होता है, तो हम ये मास्क पहन के डांस करते हैं। और ये हमारा नेक्स्ट जो है हमारा ब्राइडल ड्रेस है, ये दुल्हन का ड्रेस, ये प्रॉपर ड्रेस में है। जब शादी होता है तब ये दुल्हन लोग पहनते हैं। ये तो यहाँ का पुराना जो बुजुर्ग लोग पहनता है ये ड्रेस जो और ये हैंड केप टाइप का है। ये हेड जो है ये जिमीथांग साइड में आपको मिलेगा। ये और ये जो है जिमीथांग का ट्रेडिशनल हेड है, ये लड़की का ट्रेडिशनल हेड है। और यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे में जो लड़का का ट्रेडिशनल हेड है जिमीथांग का, जिमीथांग साइड का। ये एक चक्की है, तो इसमें हम मकई गेहूं ये सब पीसते हैं इसमें। और नेक्स्ट जो है हमारा एयर ब्लोअर, जो हम आग जलाने में आग जलाते हैं इससे, तो ये एक एनिमल का स्किन से बनता है। और यहाँ पे हम अपना जो लोकल चीज रखते हैं जो एनिमल के स्किन से बनाते हैं, तो इसका हम अपना भाषा में छुरकू कहते हैं। और ये जो है कारपेट, लोकल कारपेट, और ये सभी जो है एग्रीकल्चर का सामान है ये सभी। और ये है वाटर बॉटल जो बेम्बू से बना है, तो पहले ये यूज होता था। ये नया चश्म है हमारा, तो अभी ये यूज होता है चश्म। ये जो सामान है ये पूजा का सामान है यहाँ का, तो इसे हम अपना भाषा में दा कहते हैं। और इसे जो नेक्स्ट है इसे हम बूचे कहते हैं, और इसे हम ग्रीप कहते हैं जो पूजा में, मनपा का पूजा में यूज होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा ये मोंक लोग ही पहनता है, यहाँ का लामा का ड्रेस है, ये लामा लोग ही पहनता है ये ड्रेस। अभी हम मोनपा गैलरी का बाद याक हार्डर्स का गैलरी में एंटर करते हैं। तो यहाँ पे लोकल, यहाँ का जो यहाँ का लोकल चीज कैसे बनाते हैं, लोकल घी कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आपको डिजिटल में देखने मिलेगा। यहाँ पे जो है ब्रोकपा का जो लाइफ है तो उसे स्क्रीन में दिखाया जाता है। तो यहाँ किसे, यहाँ का जो लोकल चीज कैसे बनाते हैं, लोकल घी कैसे बनाते हैं, वो सभी आपको यहाँ पे देखने मिलेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मिस पेमा ईटन और मिस निर्मल हामू जी, आप दोनों ने जो है बहुत ही खूबसूरत और सुंदर ढंग से इस संग्रहालय का वर्णन किया। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू,
2: थैंक यू। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मिस पेमा ईटन और मिस नर्बुल हमू गैलरी गाइड से मेजर रेलिनो बॉब खातिंग वीरता संग्रहालय के विशेषताओं के बारे में, और उनसे वार्तालाप कर रही थी मिस मुडुप ट्रेमा। इसी के साथ ही कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग अब यहीं पर समाप्त हुआ। आई श्रोताओं, इसी बीच आनंद लेते हैं एक गीत का, फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से, गायक अरिजीत सिंह के स्वर में, गीत कुमार के है व संगीत अमाल मालिक का।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया से एक गीत का आनंद लिया। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी शाम के 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात 7:50 पर रीजनल न्यूज। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। लोकसभा में आज लोक परीक्षा, अनुचित साधनों की रोकथाम, संशोधन विधेयक 2026 पर विचार एवं पारित किए जाने के लिए प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने तथा दोष सिद्ध व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जहां मामलों की प्रतिदिन सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 माह के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा तथा आरोप पत्र दाखिल होने तक 3 माह के भीतर मुकदमे का निपटारा किया जाना चाहिए। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अजिंक्य सिंह ने आज पासीघाट में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण संस्थाओं के सशक्त बनाने और जमीन स्तर पर सुशासन को मजबूत करने पर जोर दिया। जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की समग्र ग्रामीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए ये कार्यक्रम राज्य के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने प्रतिभागियों से कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान को गांव स्तर तक पहुंचाने का आग्रह किया, जिससे विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंच सके। 16वें वित्त आयोग के महत्व पर बल देते हुए मंत्री ने कहा है कि सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर व्यवहारिक समझ और समस्याओं के समाधान की क्षमता आवश्यक है। कृषि राज्य मंत्री गैब्रियल डिवांगसू ने शिक्षा मंत्री पीडी सोना की उपस्थिति में मेचुका से आलो, पासीघाट और ईटानगर के लिए 3 क्विंटल ताजी रेनबो ट्राउट मछली की रेफ्रिजरेटेड खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल राज्य सरकार द्वारा कोल्ड चेन अवसंरचना को मजबूत करने, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने तथा उच्च हिमालय क्षेत्रों में ट्राउट मछली पालकों को बड़े बाजारों तक सीधी पहुंच और बेहतर आय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मेचुका ट्राउट क्वेस्ट का दूसरा संस्करण भव्य समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर वैश्विक खेल भावना और सामुदायिक आधारित संरक्षण का उत्सव मनाया गया। प्रतियोगिता में भूटान, थाईलैंड तथा भारत के विभिन्न राज्यों से आए कुल 56 उत्कृष्ट प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हागे मामू ने पापुमपारे उपायुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले वे वेस्ट सियांग उपायुक्त के तौर पर कार्यरत थे। उन्होंने पूर्व उपायुक्त लोपसांग शेरिंग का स्थान लिया, जिनका हाल ही में नामसाई उपायुक्त के तौर पर तबादला किया गया है। पासीघाट परिषद अरुणाचल प्रदेश की पहली शहरी स्थानीय निकाय बन गई है, जिसने राज्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का आज परिषद के चीफ काउंसिलर तागोम पादुंग ने डिप्टी चीफ काउंसिलर कामिन लगो, काउंसिलर म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जयंती पर्तन तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में शुभारंभ किया। प्रारंभिक चरण में यह पोर्टल केवल ट्रेड लाइसेंस संबंधी सेवाओं के लिए समर्पित है। अब पासीघाट नगर परिषद के आधिकारिक क्षेत्र में नागरिक और व्यवसायिक प्रतिष्ठान नए ट्रेड लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन, लाइसेंस का नवीनीकरण, आवेदन की स्थिति की ऑनलाइन जानकारी, ट्रेड आइटम हटाने सहित अन्य संबंधित सेवाओं का लाभ ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। विधायक

0: shifting the Khonsa post office. The temporary relocation will facilitate the construction of diversion road and help restore smooth traffic movement. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार तथा रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हुए हैं। लीजिए पेश है एक देशभक्ति गीत गायक टाइगर श्रॉफ के स्वर में। गीत कुशाल किशोर के है व संगीत विशाल मिश्रा का।

197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। डीजे श्रोताओं, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है हेलिम आसाम से, आप है ज्योति सूरी, और असम से हितेंद्र दास। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म हासिल से यह गीत अभिजीत भट्टाचार्य के स्वर में। इसरार अंसारी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है जतिन ललित ने, और इस गीत के बोल है आंखें भी होती है दिल की जुबान।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है कोपर गांव से। आप है सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे, मानसी मलोदे और श्वेता मलोदे। आप सबकी पसंद पर आई सुनी फिल्म प्रेम बंधन से यह गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी द्वारा शब्द रचना पर इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने और इस गीत के बोल हैं मैं तेरे प्यार में पागल।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत। मेरिट कैंट से आप है दिग्दर्शन गौर, कविता गौर, और निमंदाबाद जिंद हरियाणा से आप है जसबीर सिंह अरोरा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। आप सबकी पसंद पर आइए सुनिए यह गीत, फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से यह गीत कल्याण जी आनंद जी द्वारा संगीत निर्देशन पर अनजान के लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, अगला नगमा पेश करने की हमें गुजारिश की है। तोरोवल नवन शहर पंजाब से आप है। गगनदीप थांडी, तृप्ता कुमारी थांडी, डॉक्टर प्रियंका थांडी, डॉक्टर प्रशांत थांडी, डॉक्टर प्रियाम थांडी, बेबी वमिका और वानी थांडी। आप सबकी पसंद पर आई सुनते हैं फिल्म ये रात फिर न आएगी से यह गीत महेंद्र कपूर के स्वर में। एसएच बिहारी द्वारा लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है ओपी नयार ने, और इस गीत के बोल है मेरा प्यार वो है।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। रिंगनी छत्तीसगढ़ से आप है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आपकी फरमाइश पर पेश है फिल्म गोरा और काला से यह गीत, मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी के लिखे बोल पर इसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत के बोल है धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी की वजह फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक व्हाट्सएप जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा या रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओ, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के 9:00 सुनिए न्यूज़ @9। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, शर्मिला ने जीता देश के लिए दूसरा स्वर्ण पदक। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता, प्रतियोगिता में भारत तीसरे स्थान पर। गुजरात की देविया नीवा झाला ने इतिहास रचते हुए एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। एमीरा खोसला ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में बनाया नेशनल रिकॉर्ड। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा, अनुभवी रविंद्र जडेजा की वापसी। और हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप में राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने किया ऐतिहासिक प्रदर्शन, दागे 41 गोल।

0: कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों से, जहां खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की तैराकी स्पर्धा में श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में आज जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। दो बार के ओलंपियन और इस इवेंट में भारत के नेशनल रिकॉर्ड होल्डर नटराज हीट में सबसे तेज 16 तैराकों में शामिल होकर आसानी से आगे बढ़े। बेंगलुरु के इस तैराक ने अपने हीट में 5वां और कुल मिलाकर 13वां स्थान हासिल करने के लिए 55.58 सेकेंड का समय लिया। 25 वर्षीय तैराक ने शुरुआती 50 मीटर की दूरी 26.26 सेकंड में तय की और फिर 55.58 सेकंड में रेस पूरी कर ली। वहीं अनुभवी साजन प्रकाश की चुनौती पुरुषों के 50 मीटर बटरफ्लाई में क्वालिफाई न कर पाने के बाद खत्म हो गई। वहीं इस समय महिला वेट लिफ्टिंग की 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा देवी प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। और लगातार भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है। कल भी कई पदक भारत ने अपने नाम किए। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता। वुमेन्स शॉटपुट F57 वर्ग की फाइनल स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उन्होंने 6 प्रयासों में 9.48, 9.58, 9.81, 9.17, 9.37 और 9.60 मीटर का प्रदर्शन किया। तीसरे प्रयास में हासिल 9.81 मीटर उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस उपलब्धि के साथ शर्मिला ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यह पदक अपने नाम किया और यह पदक उन्होंने अपनी मां को समर्पित किया।
1: बहुत खुश हो रहे हैं सर, मेडल लाके हमारे देश के लिए प्राउड फील हो रहा है और ऐसे ही हमारे देश का नाम हो जाता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरा सपना था, मेरी माँ का सपना था और ये गोल्ड मेहनत से गोल्ड लेके आए हैं। मेरी माँ बहुत खुश होगी, मेरी माँ के लिए ये मेडल है। मेरा एशियन गेम की तैयारी है और आगे ओलंपिक, ये मेरा फर्स्ट मेडल है और आने वाले टाइम में और अच्छे अच्छे मेडल लाके रखे लोग।
0: दूसरी ओर भारतीय हाई जंप खिलाड़ी सर्वेश अनिल कुशारे ने फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 2.25 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक अपने नाम किया।
2: भारत के सर्वेश अनिल कुशारे, उनका पहला अटेम्प्ट 2.05 मीटर की हाइट पर सफाई से पार किया। सर्वेश अनिल कुशारे का ये अटेम्प्ट कामयाब होगा, बिल्कुल कामयाब होगा। क्लियर किया, कामयाबी सर्वेश के नाम और दावेदारी पेश।

0: उधर वेटलिफ्टर वल्लूरी अजय बाबू ने पुरुषों की 79 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 330 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक जीता। उन्होंने स्नैच में कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड भी बनाया। वहीं महिला वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी सोरा खाइबम ने भारत के लिए 58 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। बिंदिया रानी देवी ने कुल 199 किलोग्राम के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिन्होंने स्नैच में 87 और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम उठाया। नाइजीरिया की रफियातु फोलाशादे लावाल ने कुल 229 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं महिलाओं की 53 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता। ज्ञानेश्वरी ने कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी।
1: 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा खिलाड़ी सुश्री शर्मिला धनकड़ ने स्वर्ण पदक व सुश्री शिल्पा के शायल ने कांस्य पदक जीता है। श्री सवेश कुमार सारे, श्री वलूरी अजय बाबू, सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक एवं सुश्री बिंदिया रानी देवी ने कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। भारत की 18 वर्षीय क्वेश खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं।
0: और श्रोताओं, हमें अभी भी खबर मिली है विशाल टीके ने 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। एक अन्य भारतीय राजेश रमेश बेहद मामूली अंतर से अगले दौर में जगह बनाने से चूक गए। इसके अलावा एथलेटिक्स, तैराकी, पैरा तैराकी और लॉन बॉल्स में आज भारतीय खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। वेट लिफ्टिंग में आज रात 11 बजे महिलाओं के 69 किलोग्राम फाइनल में हरजिंदर कौर पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। लॉन बॉल्स में भी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। महिलाओं के सिंगल सेक्शनल प्ले में नयन मोनी सैकियर आज रात मुकाबला करेंगे। वहीं बॉक्सिंग में महिला वर्ग के 54 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में प्रीति आज रात 10:30 बजे मुकाबला करेंगी और 11 बजे प्रिया का मुकाबला 60 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में होगा और परवीन जो है वो 65 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल मुकाबले में प्रतिस्पर्धा करेंगी। वहीं एथलेटिक्स में हाई जंप फाइनल में पूजा आज मुकाबला करती नजर आएंगी और तैराकी में भी कई मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुषों के 50 मीटर फ्री स्टाइल S13 हीट्स में RVV BK बुदिग्ना और इमाम अली ने भी अगले दौर में जगह बना ली है और भारत की पदकों की संख्या और प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। उधर राजकोट की देविया निभा झाला ने एशियन गेम्स के 400 मीटर रेस के लिए क्वालिफाई कर लिया है। वो इस इवेंट में हिस्सा लेने वाली गुजरात की अकेली महिला एथलीट है। एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आईजी नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक खेला जाएगा। और अब बात निशानेबाजी पर। चीन के हंगझोऊ में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में ये पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। सुनते हैं वैष्णवी की एक रिपोर्ट।
2: फाइनल में सोनम और हिमांशु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 441.2 पॉइंट के साथ कांस्य पदक जीता। एलावेनिल और पार्थ 378.8 की फाइनल स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे। इससे पहले दोनों भारतीयों ने क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई। सोनम ने 317.2 और हिमांशु ने 317.4 पॉइंट के साथ कुल 634.6 अंक के साथ क्वालिफाई किया था। एलावेनिल वालरेविन और पार्थ राकेश माने की जोड़ी ने 634.2 के अंक के साथ अगले दौर में जगह बनाई थी। सोनम ने इससे पहले 2024 में काहिरा में ISSF वर्ल्ड कप और नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में रजत पदक जीता था। ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनेडा में उन्होंने 5वां स्थान हासिल किया था। 20 साल के हिमांशु के लिए कांस्य पदक उनका पहला सीनियर ISSF वर्ल्ड कप पोडियम है। हिमांशु ने इससे पहले 2025 में नई दिल्ली में

0: एसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल पुरुष जूनियर इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। इससे पहले उन्होंने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। वैष्णवी स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्लाइंबिंग चैंपियनशिप पर। भारत की 15 वर्षीय अमीरा खोसला ने इटली के ऑर्ग्रो में वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में 7.60 सेकंड का समय लेकर इतिहास रच दिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: अमीरा खोसला ने प्रतियोगिता में छठा स्थान हासिल करते हुए स्पीड क्लाइंबिंग में नया इंडियन नेशनल यूथ रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले क्वालिफिकेशन राउंड में उन्होंने 7.74 सेकंड के साथ अपना निजी श्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़ा था और फाइनल में 7.60 सेकंड के साथ इसे बेहतर किया। इस जीत पर अमीरा ने कहा कि वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए सबसे गर्व का पल है। दुनिया के सबसे अच्छे यंग स्पीड क्लाइंबर्स के खिलाफ मुकाबला करते हुए उनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में किसी भारतीय का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है और वैश्विक मंच पर इंडियन स्पोर्ट क्लाइंबिंग के लिए एक और उपलब्धि है। वर्ल्ड यूथ क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में इंडियन टीम का प्रतिनिधित्व अमीरा, श्लोक दादुकर, नील वारके और रुद्र करंदीकर ने किया। दादुकर ने 6.76 सेकंड के साथ 27वें स्थान पर रहे। वारके 35वें जबकि करंदीकर ने 44वां स्थान हासिल किया। मुकेश कुमार बल, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात हॉकी पर। ग्वालियर में हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप में कल राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। पुलसी मुकाबले में राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को रिकॉर्ड 41-0 से धूल चटाई। ये हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला एकेडमी चैंपियनशिप के इतिहास में किसी टीम की सबसे बड़ी जीत बन गई है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
3: शुरुआत से ही राउंड ग्लास हॉकी एकेडमी ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। विरोधी टीम को उनके ही हाफ में दबाए रखा और बेहतरीन फिनिशिंग दिखाई। टीम के लगातार आक्रामक दबाव का नतीजा ये हुआ कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे 8-0 से आगे थे और दूसरे क्वार्टर में 11 गोल करने के बाद हाफ टाइम तक ये बढ़त तेजी से बढ़कर 19-0 हो गई। टीम ने तीसरे क्वार्टर में 9 और गोल किए और आखिरी 15 मिनट में शानदार 13 गोल दागे, जिससे तमिलनाडु का डिफेंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने कोई गोल नहीं होने दिया। गोलों की इस ऐतिहासिक बारिश में सलोनी का व्यक्तिगत प्रदर्शन शानदार रहा, जिन्हें 12 गोल दागने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सलोनी को कप्तान रश्मीन कौर और हरमनजोत कौर का बेहतरीन साथ मिला, जिन्होंने अटैकिंग सर्किल में जबरदस्त खेल दिखाते हुए 7-7 गोल किए। रुखसाना लगातार खतरा बनी रही और इस ऐतिहासिक स्कोर में 5 गोल का योगदान दिया, जबकि हरमनप्रीत कौर ने 4 गोल किए। इस शानदार आक्रामक प्रदर्शन को दिया और मुस्कान गिल के 2-2 गोल ने और मजबूती दी। पूल सी के एक अन्य मुकाबले में मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी ने अनंतपुर स्पोर्ट्स एकेडमी को 15-0 से रौंद दिया। मध्य प्रदेश की शानदार जीत में नम्मी गीताश्री ने 6 गोल किए, जबकि भाविका ने 5 गोल दागे। ख्वाहिश परमार, चुटकी कुशवाहा, शीतल प्रजापति और जागृति यादव ने भी गोल कर अहम योगदान दिया। प्रतियोगिता के पूल ए मुकाबले में राजा करण हॉकी एकेडमी ने तमिलनाडु हॉकी एकेडमी को 9-1 से हराया। कप्तान राखी ने 5 गोल किए, जबकि शबनम ने 2 गोल दागे। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात क्रिकेट पर। बीसीसीआई ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। आइए सुनते हैं अर्जुन की रिपोर्ट कि किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है।
4: बीसीसीआई ने कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी में अधिकतर युवा खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। ऑफ स्पिनर सारांश जैन को पहली बार भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है। 33 वर्षीय सारांश घरेलू मैचों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 188 विकेटों के साथ साथ 2223 रन भी बनाए हैं। मानव सुथार, गुरनूर बरार, साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िक्कल और ध्रुव जुरैल जैसे युवा खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के दम पर टीम में शामिल किया गया है। वहीं अनुभवी रविंद्र जडेजा टीम में वापसी कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 26 नवंबर को उन्होंने आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला था। जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन फिटनेस क्लियरेंस के बाद ही मुकाबला खेलने के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं वॉशिंगटन सुंदर पहले टेस्ट मैच में उपलब्ध नहीं रहेंगे।
1: और अब बात शतरंज पर। भारत के मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चैलेंजर जावो खीर सिंदारोव का सामना करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को

0: दे दीजिए। नमस्कार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लो ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं। मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है। अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है। कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था।
3: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट।
4: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था। वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है। 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके।
3: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस।
2: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं होने और वास्तविक सुधार नहीं करने का आरोप लगाया।
5: इस संशोधन वाले बिल का विवरण पढ़ के साफ साफ पता चल जाता है कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
2: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक पर चिंता व्यक्त की। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी निष्पक्ष परीक्षा का हकदार है। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
6: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे

0: कड़े कानून बनाएं जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन, पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उसपे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहां के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
1: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देशभर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
4: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित

0: रखती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार

0: नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया। जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा। और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Lok Sabha discussing bill proposing stricter punishment and setting up of fast-track courts in paper leak cases. Government says new legislation reflects resolve to protect students' future. Opposition stresses on wider reforms. Supreme Court orders release of minor students arrested during protests on

कार्यक्रम वंदना दोपहर के 3:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मेरी बात। कल शाम के 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग कार्यक्रम। फोन पर ली गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी कल शाम के 7:10 पर। कल रात के ठीक 8 बजे सुनेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। श्रोताओं कलम फिर हाजिर होंगे दोपहर के ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमू, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता